0: वाह जी,
1: आप भेटां दे संबंधां विच बंदिया रब नूं तू ठगी जाना
0: वाह जी वाह,
1: आप भेटां दे संबंधां विच बंदिया रब नूं तू ठगी जाना। पर

0: साहब हुए, अजला साहब हुए, बड़ी
1: जी
0: वजनदार गलबात होंगी है ना जी,
1: जी
0: और काबिले गौर होंगी है
1: बिल्कुल
0: जरा,
1: है, बिल्कुल है
0: ये वधिया लगता, सोहना लगता, बहुत बड़ा कुछ निकल के सामने आंदा जी, जड़ा
1: जी
0: हैगा मसले मसाइल भी हल हुंदे आ, जरूर गल्लां हुंदियां, फिर बड़ा कुछ
1: बिल्कुल
0: जड़ा
1: है
0: हैगा
1: जी
0: निकल के सामने, वधिया लगता, सोहना लगता, बड़ा बड़ी गल है जनाब, जड़ा हैगा
1: जी
0: बहुत सोहना मंच हैगा, ते फिर सोहने अगे जड़े हैगे शख्स भी जड़े हैगा जी, ओ
1: बिल्कुल
0: गल्लां
1: है
0: बातां करदे, बड़ा वधिया लगता
1: जी
0: जी। ते राजन सैनी साहब कह के गए सी भी चलो सूफी कलाम थोड़ा जा, सूफी कलाम भी सुना दिना, ते एक गीत
1: जी
0: भी नाल जरा जल्दी जल्दी मैं गुनगुना देवांगा,
1: जरूर जी जरूर
0: ते जी, बाकी जड़ा हैगा गल्लां बातां तो हो गई, जड़ा हैगा देखो जी जो भी है इस वेले सूरते हाल हैगी आ,
1: जी
0: बस दुआ दुआ की जाए, जड़ा हैगा कहिंदे ना रहनुमा जड़ा हैगा वधिया रहनुमा आवे, जड़ा अगे रहनुमाई करे, और जड़ा हैगा तो कुछ आवाम नू भी जरा सुख दा साह आवे है ना, सारा दे हक हकूक जड़े हैगे उन्हां नू दित्ते जान,
1: जी
0: ते एक सोहणे समाज दी सिरजणा हो जावे,
1: बिल्कुल है
0: सोहणे
1: जी।
0: समाज दी सिरजणा हो जावे। ते लो जी फिर सूफी कलाम दे नाल थोड़ा शुरू करदा हैगा
1: आउण
0: मैं
1: दियो जी, आउण दियो जी।
0: जी। छड़ी ही साब दिया गल्ला, छड़ कल दी फिक्र सजना, छड़ी ही साब दिया गल्ला, छड़ कल

0: उम्र पर महका जान दे। लो
1: बहुत
0: जी, ये सी सूफी कलाम
1: थैंक
0: ते
1: यू जी,
0: एक
1: थैंक यू
0: सॉन्ग जड़ा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तड़ी इजाजत होवे
1: जरूर
0: ते।
1: जरूर, आउण
0: हां
1: दियो, आउण दियो
0: जी
1: जी।
0: जी जी जी

जी हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। हाथ जोड़ खड़ा अर्ज गुजारदा, नैनी अत्थर उत्ते मनो ताहा मारदा। मजबूर है सिपाही सरकार दा, कहंदा एहो जही सजा दसे ना कुरान जी हादा नारा मारदा। हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। सुबा सरहंद दे आगे खड़ गया, सुचे मुसलमान नू गुस्सा चढ़ गया। सच कहन उते सूरमा सी अड़ गया, कहंदा शर शर झूठा थोड़ा फुरमान जी हादा नारा मारदा। हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। कहंदा बच्चियां तो होया की कसूर है, सजा मौत वाली जिंदे क्यों हजूर है। मैनू थोड़ी नौकरी ना मंजूर है, फिट लान ता दियोगा तुसा नुजहान जी हादा नारा मारदा। हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। थोड़ा वैर है गोविंद सिंह नाल जी, ओदे नाल लड़ो बाण के मिशाल जी। मारो ओनु पावे कर के हलाल जी, एना निर्दोषियां दी कातो लेंदे जान जी हादा नारा मारदा। हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। कहंदा थोड़ी नौकरी नु मारी लत है, मेरे विच इस्लामी किस

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कहे।

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

के अड़या लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर हिजर दे सजना, तेरे तीर हिजर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस

जो दुनिया पत्थर मारे, असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना, असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राय सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया। हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई पटोले।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखाकर बेसमेंट सब भर ले। रजनीये नू पता नहीं लगना, रजनीये

0: इस
1: जी
0: नू तुसी किस नजरिए तो देख दे हो?
1: देखो बिल्कुल मैं पेरेंट्स नू और बच्चों नू जो वो सोच के ये अप्रोच अपनाते हैं वो
0: हाँ
1: सोच
0: जी
1: तो सही है कि साडे बच्चे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जिन्ना कि भी पढ़ना है पढ़ के कम लग जान, बिल्कुल सही सोच है।
0: हाँ जी
1: पर जो अप्रोच अपना रहे ने ना वो बिल्कुल गलत है। ओदे विच की है देखो बच्चे साडे कोले भी अज साडे नाल जिला रोजगार दफ्तर दे नाल साडे नाल बहुत सारे जिहड़े बच्चे जुड़े हुए है वो सिर्फ
0: अच्छा जी
1: प्लस टू पास ने।
0: अच्छा जी
1: तां सिर्फ प्लस टू बेसिस ते किहो जी जॉब मिल सकती है बिना कोई स्किल तो, बिना
0: हाँ जी
1: कोई ऐसी कोई उन्हां कोले स्किल भी नहीं है। ठीक है कंप्यूटर दा जे उन्हां नूं कोई पूछ लैंदा है तां कंप्यूटर सिख्या सी बट हुण भुल गए आ। तां
0: हाँ जी
1: तुसीं खुद सोचो कि इहो जी कीहड़ी जॉब है और उन्हां नूं जॉब चाहीदी है किसे ऑफिस दे विच बैठन वाली जॉब होनी चाहीदी है जी, कंप्यूटर वाली जॉब होनी चाहीदी है, कंप्यूटर आंदा नहीं है जी,
0: आउंदा नहीं है।
1: तां कितना पॉसिबल हो सकदा है कि उहो 12वीं तो बाद एक अच्छी जगह ते सेटल हो सकदे ने?
0: सही गल
1: बिल्कुल
0: है।
1: नहीं है।
0: हाँ जी
1: हाँ कुछ कोर्सेज ऐसे हैगे ने
0: हाँ
1: जेड़े वो
0: जी
1: करके 12वीं या फिर 12वीं तो बाद ग्रेजुएशन दे नाल नाल अगर वो चीजा कर लैन तां वो बिल्कुल जल्दी बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर सकते ने। तां मैं वो जरूर इत्थे डिस्कस करना चाहूंगी।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जिवें कि बच्चा 10वीं या 12वीं पढ़ता है और ओदा एम है गवर्नमेंट जॉब लैनी है, उन्हें सरकारी नौकरी लैनी है,
0: हाँ
1: ठीक है,
0: जी
1: तां या फिर बस उन्हें नौकरी लैनी है,
0: हाँ
1: मान
0: जी
1: लो
0: हाँ
1: कोई
0: जी
1: भी बच्चा उन्हें नौकरी लैनी है,
0: नौकरी
1: बस
0: लेनी है।
1: नौकरी लैनी है,
0: हाँ
1: तां
0: जी
1: ओदे लई देखो सब तो बेस्ट ऑप्शन की है कि वो 12वीं तक अगर वो आर्ट्स दे विच पढ़ना है सही, मान लो कि वो स्टडीज दे विच ठीक ठाक है पढ़ने लई, ठीक है वो आर्ट्स दे विच प्लस टू कर रहे हैं
0: हाँ जी
1: उस तो बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, तां ओदे कोलो 3 साल दे विच अगर वो 3 साल अपनी ग्रेजुएशन दे नाल नाल
0: हाँ जी
1: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी करना शुरू कर लवे जेडे कि
0: अच्छा जी
1: एसएससी दे थ्रू हुंदे हैं या फिर बैंक एग्जाम हुंदे हैं, बैंक दे क्लैरिकल दे एग्जाम हुंदे हैं, बैंक पीओ दे एग्जाम्स हुंदे हैं,
0: हाँ
1: ठीक है,
0: जी
1: तां उन्हां दी तैयारी करना शुरू कर लवे बच्चा तां
0: ठीक
1: भी
0: है जी
1: बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखो 3 साल जेडे ग्रेजुएशन बेसिस दे जिन्ने भी टेस्ट मैं तुहानूं दस रही हां हुण तां
0: हाँ
1: सारे
0: जी
1: ही मोस्टली जेडे हैं इन्हां दा सिलेबस जेड़ा है तकरीबन तकरीबन सेम ही हुंदा सब दा,
0: अच्छा जी
1: तां रीजनिंग पार्ट हो गया जी के करंट अफेयर इदां दा ही सिलेबस, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन जरूर हुंदी है बट ये सारा सिलेबस जेड़ा इन्हां दा सेम ही हुंदा है।
0: अच्छा जी
1: अगर बच्चे अपने 3 सालां दी ग्रेजुएशन दे नाल हर रोज 2 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करके उस सिलेबस जो जेड़े जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आंदे ने सब दा सिलेबस ले लैन
0: हाँ जी हाँ जी
1: तकरीबन तकरीबन जेड़ा कि सेम ही है, वो 2 घंटे भी उसदी तैयारी 3 साल तक करनगे तां तुसीं अंदाजा लगा लो कि उन्हां दे जो सक्सेस चांसेस हैं वो किन्ने ज्यादा वध जाणगे,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: सिलेक्शन दे चांसेस किन्ने ज्यादा वध जाणगे।
0: सही गल है जी
1: हाँ तो वो ग्रेजुएशन दे नाल नाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल जी एक
1: बट
0: मैडम हाँ जी
1: हाँ जी बट अगेन ना अपने च ये चीज दी कमी है साडे मोस्टली जेड़ा साडा पेंडू तबका है साडे जेड़े विलेजेस च रहंदी यूथ है
0: हाँ जी
1: उन्हां नू ना इस चीज दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नू लैण दे लई, ठीक है, तां ओह चीज दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल ये तो जरूरी है जे पता ही
1: हाँ
0: नहीं है
1: जी
0: तो करेंगे की
1: हाँ बिल्कुल। तां हुण जेड़ा मैं तुहानूं पहलां सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानूं इक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असीं अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे हां और उहनां नूं अवेयर करदे हां, उहनां नूं बल्क मैसेजेस दे थ्रू उहनां नूं अवेयरनेस दिंदे हां कि
0: हाँ
1: ए
0: जी
1: वाले टेस्ट निकले हुए ने तुसीं अप्लाई कर सकते हो,
0: अच्छा जी
1: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असीं कम कर रहे हां। बट यही है कि साडे कोल जद तक यूथ खुद चल के साडे कोल आ के पुछेगी नहीं या उहनां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा तां उदों तक साडियां जेहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
0: नहीं हो
1: सकदियां जब तक
0: सकदी
1: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
0: बिल्कुल जी
1: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
0: बिल्कुल जी मैडम साहिबाना जी तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने जो लगातार सुनते रहना चाहिए है पर समा जिड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
1: हाँ जी
0: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए ये गलबात आपां करते रहिए विचार चर्चा करते रहिए सो अज दा जिहड़ा